उठ के बह गए सार सगत बोलो श्री ता राय ने सोचिया ए ता कोई खुदा दा नूर है जिसने मुख उते सर्प शां करके खलोता ओ जदो राय जी ने पहला वारी गुरु नानक दे दर्शन कीते ते विक गया अज जदो गुरु नानक सच्चे पातशाह 12 साल दी उदासी ते संसार नू तार दे होए विचर रहे हैं वापस तलवंडी नहीं गए ते राय दी ए हालत है कि गुरु नानक दे दर्शन तो बिना राय ना कुछ खाना चंगा लगता है ना नींद पैंदी है इवें लगता है कि मेरे तन विचों प्राण निकल रहे हैं लेकिन निकल दे रहे सत्संग बोलो श्री

मैं ता कालू जी राय बुलार दे पटवारी सा आख्या मेहता जी आपनू राय जी याद कर दे उस बन विच बैठे हन ब्रिक हेठा जिथे गुरु नानक दे दर्शन कीते सन उन्हां मेहता जी आए राय जी ने आउंदे ही पुछिया मेहता जी कोई गुरु नानक दा सुख स्नेहा आया मेहता कालू जी कहन लगे कोई नहीं आया 12 साल बीत गए कोई स्नेहा नहीं आया आख्या मैं ता उस वेले नू कोसदा हां राय जी मैं अपने हाथ वाल वेख के अपने हाथ नू सराप देंदा हां के तू सुख के तीला क्यों ना हो गया क्योंकि मैं ही सां जिसने 20 रुपया दे पिछे गुरु नानक दे मुंह ते चपेड़ मारी सी राय जी जापदा गुरु नानक हुण नहीं आवेगा आख्या इवें ना आखो तू बेबे नानकी जी नू खबर भेज ता मेहता कालू ने आख्या बेबे नानकी नू खबर भेजी है सुल्तानपुरी जापदा ओ भी इत्थे आवेगी क्योंकि घर दी हालत ता बहुत खराब है 12 साल हो गए हन गुरु नानक नू घरों गया ते घर तो घर नहीं है खंडर बन चुके क्योंकि जिस घर का चिराग 12 साल हो गए हुण बार होवे जिस माता का इको एक बच्चा इको एक लाल होवे ते ओ भी 12 साल हो गए हुण गया होवे घरों ते कोई सुख स्नेहा ना होवे उस मां का की हाल होवे इत्थे माता त्रिपता ने रो रो के अपनियां अखां गवा दित्ती के हे नानक कदों आवेगा कदों आके अपनी सोहनी आवाज मेरे कन्ना विच पावेगा इत्थे माता तृप्ता अरदास कर रही है बेनती कर रही है कदों आवेगा बेटा असी तेनू पछाणिया नहीं बेबे नानकी ने तेनू पछाणिया के तू रब है तू परमेश्वर दा रूप है असी तां तेनू पछाण ना सके इत्थे जदों मेहता कालू जी राय जी बैठे अरदास कर रहे इत्थे बेबे नानकी सनेहा पहले ही गया होया सी बेबे नानकी रथ ते चढ़ी हुई सुल्तानपुरी तो आ रही है सुल्तानपुर तो आ रही है ते रस्ते विच की वेखिया जंगल विच ब्रिख दे हेठां राय जी बैठे हन नाल पिता कालू जी बैठे रथ रोकिया उतर के आई राय जी कहन लगा मेहता जी नानकी आ गई जे आख्या नानकी आ गई है तो हुण नानक भी आ जाएगा साथ सगत बोलो श्री क्योंकि स्याणे अनुमान ला लेंदे हन जे बदल आ गए हन तो बरखा भी होवे आख्या नानकी जा कर मां दा हाल वेख बेबे नानकी जो घर आई ते घर की वेख्या घर घर नहीं है खंडर बन चुके आवाज दिती मां माता तृप्ता ने आवाज पछाणी ए ता नानकी है और नानकी आ वेखना घर दी की हालत है नानक दे प्यार विच मैं ता रो रो के अखां भी गवा दितियां अज 12 साल हो गए हन नानक नु गए ते एक एक साल विच मैं एक एक चोला तैयार कीता नानक वास्ते आ 12 चोले तैयार हो गए सात सगत बोलो श्री बेबे नानकी ने जदों ए घर दी हालत वेखी मां दी ऐसी हालत वेखी पिता दा ए हाल वेख्या ते कोठे ते चढ़ गए बेनती कीती ओ वीरा तू मैनू क्या सी के बेबे जदों तू मैनू मन करके याद करेगी ना मैं तेरे कोल ही होवां मैं 12 साल हो गए तेनू इस वास्ते याद ना कीता के खबरे मैं तेनू याद करा ते उस वेले पता नहीं तू किस पापी ने तार रहा हुए पता नहीं किस पुन्नी दे पुन्ना नू भाग ला रहा हुए ते मैं तेनू इस वास्ते नहीं बुलाया लेकिन घर दी हालत माता पिता दा हाल वेख के हुण रहा नहीं जाऊंदा वीरा छेती घर आ
उस वेले गुरु नानक सच्चे पातशाह 2700 को दूर बैठे सन। ते जदों ए बेबे नानकी दी पुकार पहुंची, गुरु नानक पातशाह ने आख्या, मर्दानियां अखां बंद कर, वापस चलिए तलवंडी। सार सगत बोलो श्री। ते जदों अखां बंद कीतियां, अखां खोलियां, की वेख्या, तलवंडी दी गली विच गुरु नानक पातशाह नाल बाला दे मर्दाने। मर्दाने ने आख्या, पातशाह वापस क्यों आए हो? आख्या, बेबे याद कर रही है, बेबे नानकी याद कर रही है। इत्थे बेबे नानकी आख्या, वीरा तेनू मक्खन बड़ा चंगा लगदा है ना, तू बचपन विच आ मक्खन मैं रिड़कदी सां, दही रिड़कदी सां, मक्खन कढ़दी सां, तली ते रखदी सां, कहिंदी सां कि मैं पहला अखां खोलांगी कि तू पहला मक्खन खावेंगा, ते तू पहला तली तो चुक के मक्खन खा लैंदा सें। अज भी मैं मक्खन कढ़दी हां, दही रिड़की, इत्थे बेबे दही रिड़क रही है, इत्थे गुरु नानक पातशाह तलवंडी दी गली विच आ गए। मर्दाने ने आख्या, मैं भज के जाऊंदा हां। आख्या, ना भाई ना जा। मर्दानिया, ए जेड़े तलवंडी दी गलियां दे कख पए हन ना, ए भी जन्मां दे तपस्वी हन, ए भी चरणां दी शो मंगदे हन। ते गुरु नानक सच्चे पातशाह ने मर्दाने दी बांह विच बांह पा लई, ते चूमदे होए जा रहे हन, ते की जपदे हन।

एक के हरी हरी ए ऐसा एक शुभ ते सच्चा विचार है जिसनू एक सच्चा ते सुच्चा भगत ही अपने जीवन दे विच कह सकता है क्योंकि जिसका विचार एक परमात्मा दे नाल मिल गया जिसका हर रोम रोम प्रभु चरणा दे विच रम गया और जिसका हर श्वास परमेश्वर दे नाल मिल गया ऐसा भगत ही ये कह सकता है कि हमारे एक है हरी हरी। आन अवर सिंजान ना करी ओ परमात्मा अपने भगत नू गुरु राही नाम देवांदा है जैसा कि मालिक ने शब्द दे विच फरमान कीता है।

मनुख जप भी करता है और यथा शक्ति अगर ज्यादा कोशिश करे ते तप भी कर लेंदा है। आम देखण दे विच आउंदा है कि रब दे नां ते कई व्रत भी रखते हैं।

ताप जो तप है, व्रत है नेम है, आचार तो मतलब करैक्टर है मनुख दा, और व्यवहार जो रोज दा व्यवहार करदा है, जात जो कम तो पहचानिया जांदा है। साहिब फरमान करदे हन कि ए सारा कुछ जे मनुख करदा होया अपने गुरु दे अर्पण कर देवे ते मानो के जो त्याग दे विच उसनु सुख प्राप्त होवेगा, जो शांति प्राप्त होवेगी, ओहो ही सच्चा सुख है और ओहो ही सच्ची उसनु शांति प्राप्त होवे। साहिबां दा फरमान है कि जे कोई ये चाहे कि मैं महा आनंद दी प्राप्ति कर लवां, ते महा आनंद दी प्राप्ति है कि उस मालिक दी कीर्ति कीती जावे, उस मालिक दा जस गाया जावे। जैसा कि गुरु नानक पातशाह ने अपने जीवन दे विच कीता, अपने जीवन दे विच उन्हां ने होर कोई योग नहीं कीता, इको ही योग कीता कि उन्हां ने अपने प्राणा राही प्रभु दी कीर्ति कीती। इतना गाया प्राणा करके, इतना गाया कि उन्हां दा जप ही ज्ञान हो गया, उन्हां दा तप ही ज्ञान हो गया। और साहे फरमान करदे हन कि जेड़ा उस परमात्मा दी कीर्ति सच्चे दिलों करदा है, ओ मालिक दी प्राप्ति दे विच सफल हुंदा है।

विद्या मानो के नाम जपण वालियां दे देवते, नाम जपण वालियां दे वड्डे जिन्हां नूं सारियां ने सत्कारिया, ऐसे भगत नामदेव ने बचपन दे विच नारायण नूं प्रगट करके दुध पिलाया ते शब्द उचारण होया दूध पियो गोविंदे राय, दूध पियो मेरो मन पतिया।

दूध पियाए भगत कर गया, नामे हर का दर्शन भया। नामदेव नू हरी दे दर्शन होए ते भगत नामदेव दे प्यार वाला दूध नारायण ने पी के बख्शा कीतिया। ते इसे तरह भगत नामदेव संतां दा संग कर दे, नाम जप दे, परमात्मा नू याद कर दे, अपनी उम्र बितांदे गए। थोड़े जे वड्डे होए

दूर बाहर स्वामी ज्ञानेश्वर जी ने विश्राम कीता। देखिया नेड़े एक खूह दिखाई दे रहा है, मगर उस दे विच पानी कोई दिखाई नहीं देता। खूह ते है मगर पानी कोई नहीं। ते ज्ञानेश्वर जी महाराज ने सोचिया, देखिया बई ए मेरे नाल जो

क्या ज्ञानेश्वर जी महाराज ने भगत जी तुसी भी पानी पियो ते नामदेव जी ने इनकार कर दिता। कहन लगे महाराज मैं केवल अपनी प्यास नहीं बुझाना चाहुंदा, मैं चाहुंदा हां कि आने वाले समय दे विच जो राही इस राह तो गुजरन ए कुआं उना दी भी प्यास बुझावे। एदे विच जल जो है वह नको नक पर आवे। ज्ञानेश्वर जी ने समझाया बच्चे तू अपनी प्यास बुझा ता जो असी अगे भी राहे पैना है और द्वारका नगरी पहुंचना है। मगर नामदेव इनकारी हो के थोड़े दूर जा बैठे ते जा करके परमात्मा दे चरणा कमला

तेग बहादुर साहब कहते हैं, अपने आप को गुणी समझकर कीर्तन ना कर, मुझ में गुण है। हाँ, मुझे याद है एक बार मैं वैंकूवर बाहर गया, एक रागी जत्था आया, वो थे रबाबी। अब वो रबाबी लोग जो होते हैं वो तो कहते हैं जब उनका बच्चा रोता है तो वो भी सुर में रोता है। भाई मर्दाने के खानदान से रबाबी लोग, लेकिन इतना गुण परमात्मा ने दिया, लेकिन अहंकार आ गया कि हम लोगों के सिवा और कोई गा ही नहीं सकता। सत्य बलवंडे ने भी अहंकार किया था, हम ना कीर्तन करें तो कोई गुरु नानक को पूछने वाला थोड़ी था। तो वो कहने लगे हमारा कीर्तन उनके बाद में था, तो वो कहने लगे कोई है माई का लाल जो हमारे जैसा कोई शब्द पढ़ सके, जैसा हमने राग गाया कोई गा सके। तो हम पीछे बैठे, मैंने कहा भाई ये कीर्तन है, ये कोई दंगल थोड़ा ही है। एक बार प्यार से बोली ये दंगल नहीं है, यहां कुश्ती नहीं होती, यहां तो जैसे जैसे इंसान में गुण भरते हैं वैसा वैसा इंसान नीचा होता है, निम्रता में आता है। जो यहां भी गुण गाकर अहंकारी हो गए तो फिर निम्रता कहां आएगी, बाहर दंगल में आएगी। यहां तो निम्रता सीखनी है, जितना जितना सेवा की गुरु अंगद देव जी ने उतनी निम्रता में भरते गए। जैसे जैसे गुरसिखों ने गीत गाए वैसे वैसे निम्रता आती, नीचे होते चले।

जितने माई भाई बैठे हो सारे प्यार नाल रसना पवित्र करया करो। पोथियां सामने रखण दा एहो एक फायदा है, इंसान चंगी तरह बोल सकदा है। इसलिए सारे प्यार नाल करीबन सारी संगत ही पोथियां रखदी है, फिर पढ़दे क्यों नहीं। पढ़ो सारे, कोई रसना खाली ना रवे। आओ साहिब पंचम पातशाह जी दियां कैसियां ये प्यारियां तुकां ने, पढ़ो सारे।

सूर शब्दं सूदर शब्दं प्राकृतय सर्व शब्दं एक शब्दं जे को जाने भयो नानक ताका दास है सोई निरंजन दयो महला दूजा।

0: You're listening to SeekNet Radio.
1: बेटा, आज मैं तनु भगत नामदेव जी की बानी सुनाना। मैं अंधले की देख तेरा नाम खुंडकारा।
2: खुंडकारा क्यों गुरुदेव?
1: खुंडकारा लकड़ी के उस टुकड़े नु कहंदे ने जिस उत्ते पटरा टिकाया जांदा।
2: पटरा क्यों हुंदा?
1: जिस उत्ते धोबी कपड़े धोंदे ने। भगत नामदेव जी दात दे छीने सन ना, कपड़े धोंदे धोंदे अपनी आत्मा नु हरी नाम नाल धोंदे सन। इसे लिए उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मैनू तेरे नाम की उंगली टेक जिनी के पटरे नु खुंदकारे।

परमेश्वर का नाम विसार के जे कोई सुख मंगता है आख्या उस नूं तां सुपने विच भी कदे सुख प्राप्त नहीं हो सकता। साथ सगत बोलो श्री जियो तपत है बारो बार तप तप खपे बहुत बेकार जै तन बाणी विसर जाए ज्यों पक्का रोगी बिल लाए बहुता बोलन चखड़ होए बिन बोले जाने सब सोए जिन कन कीते अखी नाक जिन जेबा दिती बोले तात जिन मन राखिया अग्नि पाए वाजे पवन आखे सब जाए जेता मोह प्रीत स्वाद सभा कालग सभा कालख दागां दाग दाग दोष मोह चलिया लाए दरगे बैसन नहीं जाए आख्या जो संसार ते आके

उसनों कदे किसे वस्त्र दी कमी नहीं रह सकती। ओ तन और मन करके सदा सुखी रवेगा जो जपेगा श्री वाहिगुरु। हुण कौड़ी गुरु नानक पातशाह दे चरण पकड़ के की अरदास कर रहा है।

प्यार नाल सुनियो की नहीं करदा कोई रचना बांझी रखी जाए, पर कई दफा ऐसिया चीजा बंदिश दे विच आउंदियां गवैशी विच जिसनू बिखड़े टेढ़े ढंग नाल थोड़ा जा गाया जांदा है। ये आम जिन्हां सजना जां भैणां नू ताल सुर दी समझ ना होए तां कई दफा ऐसी बेरसी बेतालापन पैदा हुंदा है जिहदे नाल चीज दा समुचा रस माणिया जांदा है। सो मैनूं इस गल की हार्दिक प्रसन्नता होएगी जे भैणां जां वीर लय सुर दे अंदर बोल सकन ते इस चीज़ नाल बोलन, ते नहीं तां प्यार नाल सरवण करना इस शब्द दे विचों बहुत कुछ मिलना है।

जी बदो मुल्ला कहो ने आओ खुदाई जी बदो सो धर्म कर थापो अधर्म कहो कत भाई जी बदो

इस शब्द विच मेरे मन परदेसी वे ऐ मेरे मन तू पटकना छड़ दे तू डोलना छड़ दे तू पदार्था दा नेहो छड़ दे आ जा निज घर दे विच जो रस मानन लई तू इत्थे संसार विच आया ओ रस है परमेश्वर दे नाम दा सिमरन दा ते जिन्हां ने मान लिया उन्होंने रंग रलियां मानिया उन्होंने ऐसिया पदवियां प्राप्त कीतियां के सूख महल जाके ऊच द्वारे ता मैं वासें भगत प्यारे इसलिए भाई तू ही जपेगा तो फिर ऐसा ही तेनू सत्कार मिलेगा ऐसा ही प्यार मिलेगा गुरु दा ते जदों अगे जाएगा फिर सारे थां ते तेरा आदर होवेगा ओ मेरे मन परदेसी तू पटकना छड़ दे।

मान सकता है जेड़ा अपने घर आ गया, जिदा मन पटक रहा है, काम क्रोध लोभ मोह हंकार दी अग विच जल रहा है। ए पटकिया होया मन किते टिकदा नहीं, जिवें अक दे अंब नालों तूंबा बिछड़िया, फिर पटकन तो बिना होर कुछ नहीं। जिधर दी हवा है हवा दे बुलियां विच तके खांदा फिरदा। ऐसे तरह जिन्हां ने गुरु दे चरण छड़ के अपने निज घर नूं छड़ के जो कूड़ियां पदार्थां दे नाल नेव लाई बैठे हन, हजूर कहिंदे हन जो घर छड़ गवावना सो लगा मन माहे। जेड़ा घर छड़ जाना है उदे लई तू रात दिन पटक रहा है, ते जिथे जाए तुद वर्तना तिस की चिंता ना है, जिथे तू सदीवी काल वसना है। जेड़ा कार्य करन लई तू संसार ते आया है उस घर की कोई तैनू चिंता ही नहीं। ये शरीर भी एक घर है जिदे अंदर अकाल पुरख वाहिगुरु की जोत है। मनुख शरीर लई सब कुछ करता है, चंगे वस्त्र पहनता है, खांदा पींदा पहनदा, सुगंधियां लाउंदा, सेजावां मानदा, पर इसने आत्मा नू जिस आत्मा दे सदके शरीर चल रहा है उसनू भुखिया ही मार छड़िया, उसनू कदे नाम दा भोजन नहीं दिता, कदे गुरु दी कृपा दे वस्त्र नहीं पहनाए, कदी सतसंग

वर्ण आश्रम करके लोग आपस विच खै खै मर रहे हैं। नाम तो विहूढ़े नरकां दे वासी बन गए।

मैं सारे संसार में जाके वरतावा और संसार दे लोग तेरा नाम जप के तेरे विच अभेदता प्राप्त करन। उस वेले गुरु नानक नू करता पुरख वाहिगुरु ने एक खजाना बख्शिश किया, ऐसा अमूल खजाना ज्यो ज्यो इस नू खाओ खर्चो ये वधदा जांदा है। गुरबाणी का खजाना, नाम का खजाना, और फिर इस खजाने दे विच कदे टोट नहीं।

0: जन्म कर्म मल उतरे सच्चे के गुणगान, जन्म कर्म मल उतरे सच्चे के गुणगान, गुण गावत के पुत्र समय सच्चे के गुणगान, गुण गावत तेरी
1: पुत्र समैल
0: बिनस जाए हो मैं दुख है, जन्म कर्म

वो रो रही है कि तू तमाशा वे कैसी तेरी ठगी है, स्त्री नू पति लई पति नू स्त्री लई शिकवे है। कबीर जी कहते हैं

रोज पढ़ते हैं। राती रुति थिति वार पौन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मशाल। ए धरती मालक ने धर्मशाल बनाई, धर्मशाल ओनू कहने जिथे धर्म कमाया जावे, धर्म की गल चले। ते धर्मशाल ओनू भी कहंदे ने जिथे रात दी रात रह के अगे तुर जाना हो। ए धरती दोवां तरह नाल धर्मशाल है, इथे असी धर्म कमाउण आए, धर्मी होण आए हां। मनुख जन्म मिलिया तां धर्मी होना है, पर नहीं साडे कोल तां गलती हो गई, पसारे पा के बह गए। महाराज कहंदे ने तां उस तरह गल है जिवें कोई चरवाहा पशु चराउण वाला अपना इजड़ लै के किसे चरागाह विच किसे ऐसे थां ते जिथे पशुआं नूं चारा सौखा मिल सके उथे लै के आया। पशु चर रहे ने, पशु घा चर जाणगे, रज जाणगे, मोड़ के टिकाणे ते लै जाणा। चट घड़ी दी खेड है, कुछ घंटिया दी गल है, लेकिन चरवाहे ने उन्हां घंटिया वास्ते उस जगह ते मल मार ली, उथे पसारा करना शुरू करता, पकड़ करके बैठ गए। बल्कि इथों तक भी कई बार कहिंदा है मेरी चरागाह है, मेरे पशुआ दे चरण दी थां है। हालांकि ना पशु ओहदे, ना धरती ओहदी, ना मलकीयत ओहदी, बिल्कुल एवें बंदे नाल होया। धरती ते आया सी, जीवन मिलिया सी धर्म कमाउण वास्ते ते आ के तुर जाण वास्ते, पर इह तां पकड़ करके बैठ गए। धर्मशाल नूं घर बना के बह गए, पसारा पा के बह गए। महाराज कहिंदे ने जैसे गोयल गोयली तैसे संसारा, कूड़ कमावे आदमी बंद है घर बारा। ऐसा ना समझना

मेरी चिंता मिट गई है और मां ना मैनू डर आउंदा है ते ना मेरे अंदर कोई चिंता आउंदी, इसलिए कि तू मेरा सारिया थावां ते राखी करना, सारिया थावां ते तू मेरा राखा है, जे तू मेरे नाल है ते मैनू डर किसदा, मैनू डर किसदा, जे तू मेरे नाल है तो मैनू अग की करूगी, जे तू मेरे नाल है तो मैनू कोई बिपता संसार की सता नहीं सकती और मेरा कोई नुकसान और डरा धमका नहीं सकती मैनू, क्योंकि तू मेरा राखा है सारिया थावां ते। इसे लिए मालक सतगुर सच्चे पातशाह जी ने फरमाया, हजूर ने बड़े माण विच बड़े जोर विच किया कि एडा मेरा वाहिगुरु वड्डा है कि भावें मैं अग विच भावें मैं देग विच भावें तत्तियां रेतां सीस ते पईयां पर मैनू तत्ती वाह भी नहीं लगी। ये कौन कहेगा? खसम वाला, मालक वाला, गुरु वाला जिहड़ा है ही बेगुरा, वो कहेगा कि जिसनू कदी पिता की गोद विच बैठन का सुभाग समा ही नहीं प्राप्त होया, वो माण की कर सकता किसी ते। जिसने कदी पिता कोलो अमृत ही नहीं पीता, वो कह सकता है कि मेरा बापू मेरा पिता मेरे वास्ते आ करेगा? नहीं, नहीं कह सकेगा, उन्हूं अपनी कमजोरी का पता है। लेकिन सतगुर सच्चा पातशाह बड़े तान नाल बड़े माण नाल हजूर फरमाते ने, ताती वाओ न लग गई पार ब्रह्म सरनाई, चौगिर्द हमारे रामकार दुख लगे न पाई, सतगुर पूरा पेटिया जिन बणत बनाई, राम नाम औखद दिया एकै लिव लाई, राख लिए तिन रखन हार सा ब्याध मटाई, कहो नानक कृपा पई प्रभ पए। उस माण विच आके तान विच आके असी कौन हाँ? सारे बच्चे सारा परिवार सतगुरु जी का, बच्चे और बच्चिया परिवार मालिक सतगुरु, सतगुरु परिवार का मालिक है साडा। तो असा ये तो कदी नहीं कहना कि असी सतगुरु का परिवार हाँ, पर आप पढ़ लईए जरूर, सारी संगत पढ़ियो, गुरु अर्जन देव अकाल पुरख की गोद विच ते सारी संगत गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह दे चरणा उते, फोटो ते इवें आएगी ना, पता ते इवें लगेगा ना, अकाल पुरख की गोद विच अकाल पुरख दे चरणा उते साहिब गुरु अर्जन देव सच्चा पातशाह और उन्हां दे चरणा उते आपां सारे। उस मान विच आके सतगुर सच्चे पातशाह हजूरी विच जिवें उन्होंने माण किया, आपां भी माण करिए ना सारे। तो बोलो सारे बीबियां उच्ची आवाज विच और बड़े कंट्रोल विच, गलबात छोटी छोटी साढ़े को नहीं आनी चाहिए, क्योंकि सत्संग है, सचखंड है, वैकुंठ है, इसकी महिमा का पारावार नहीं, जे असीं नहीं सोचांगे तो बेअदब होवांगे। सारे पढ़ियो

हरजी मेरी सार करे हम हर के बालक। मुंह मंगा सोई देवदा हर पिता सुखदायक। अवगुण को न चितार अवगुण को न चितार गल सेती लायक। ज्ञान रास नाम तन सौंपियो नू इस सौदे लायक। सांझी गुरु नाल बहाले मैनू एक भाईवाली कराई मेरे वाहिगुरु ने गुरु नानक सच्चे पातशाह नू मेरे नाल भाईवाल रला दिता। यानी साडा दोवां दा सांझा हो गया आपस विच। सांझी गुरु नाल

नवनिध नाम निधान गृह तेरे मन बाचित सो लैसी पिता कृपाल आज्ञा ए दीनी बारक मुख मांगे सो देना पिता कृपाल आज्ञा ए दीनी बारक मुख मांगे

बिन घोर अंधार गुरु बिन समझ न आवै गुरु बिन सुरत न सिद्ध गुरु बिन मुक्त न पावै।

शांति बेशक चली जाए। बहुत करवानियां कीतियां सिंगा ने, मुगल फौजा ने बार बार हिंदुआं ते हमला कीता, ते सिंगा ने बार बार अपनियां जाना दे के इस हिंद नूं बचाया। जिथे सिंगा ने एडियां करवानियां कीतियां, उथे मामा ने ते छोटे छोटे बच्चियां ने भी अपना खून डोल के सिखी दियां नीयां नूं पक्या कीता। फ्रक्शियर दा राज है, हर रोज 100 सिंगा नूं मारदा है तां प्रशादा छकदा है। इहदे सिपाही जांदे ने दिन भर सिंगा नूं टोलदे रहिंदे ने, शाम तक पकड़ के लै आंदे ने, ते इह जुलमी सामने खलो के कोह कोह के मारदा है। अज जिहड़े सिंह पकड़ के लियांदे ने ना, इन्हां दे विच इक 18 साल दा नौजवान, बुढ़ी मां दा इको इक सहारा। जदों मां नूं पता लगा मेरे पुत्र नूं पकड़ लिया है, पापी राजा जुलमी राजा सिंघां ते कहर टांदा है, मां दा दर्द उठिया, रहा ना गया, राजे दे दरबार विच गई। मेरा पुत्र सिंह नहीं, तेरे सिपाही उनू भुलेखे नाल लै आए ने। बई ठीक है, जे तेरा पुत्र कह देवे मैं सिंह नहीं ते असी उनू छड़ देवांगे, केड़ा है ओ सामने बंधिया होया है। सिपाही लेके आए, असी तेनूं छड़ रहे हां, सानू पता लगा है कि तू सिंह नहीं है। अज गुरु दा प्यारा कूक कूक के बोलिया, कौन कहिंदा मैं सिंह नहीं, मेरी दस्तार वल तक, मेरे चेहरे वल तक तेनूं मैं सिंह नहीं लगदा, कौन कहिंदा है। ओ सामने तेरी अम्मा खलोती है, वो कहती है नहीं नहीं ओ मेरी मां नहीं है। अब तक लो सिखी किन्नी प्यारी है सिख नूं, ओ मेरी मां नहीं, हो सकता है उहदे पुत्र दी शक्ल मेरे नाल मिलदी होवे, पर ओ सिंह दी मां नहीं हो सकती, क्योंकि सिंघां दियां मावां इंज सिदकों डोलदियां नहीं होंदियां। मां नस के आई, पुत्र कह दे एक वारी मैं सिंह नहीं, क्यों जान गुआंदा है, ए तेनू छड़ देंगे। अज गुरु दा सिंह जोश विच पार आया, याद कर ठंडे बुरज दी कहानी, सरहंद दा साका, अजे बहुते दिन नहीं होए किवें माता गुजरी ने अपने बच्चियां नूं सेरे बन के मौत वल भेजिया सी, भुल गई है, याद कर। सिंघां दियां मावां कदों सिदकों डोलदियां ने, ओ ते आखदियां ने जा पुत्रा, अज गोविंद सिंह नूं तेरे सिर दी लोड़ है, मेरी कुख सफली होवेगी। पुत्र दियां एहो जियां गल्लां सुन के मां दा सिदक जाग उठिया, ऐ कलगियां वालिया, इस हिंदुस्तान दी धरती खातर तू अपना पिता वार दिता, बुढ़ी मां वार दिती, चारे लाल वार दिते, सारा सरवंश वार दिता, ते मैं अपना एक पुत्र लगोई जांदी हां। मां दा सिदक जाग उठिया, आप मुहारे ही मां दे मुख विचों कलगी तर दे जकारे निकल रहे।

कुमार जी श्री दर्शन कुमार जी वालों पेश की गई है। आप समूह संगत नू खालसा जी दे 300 साला

0: एक तेरा नाम खुंडकारा।
1: खुंडकारा क्यों दे?
0: खुंडकारा लकड़ी दे उस टुकड़े नु कहंदे ने जिस उते पटरा टिकाया जांदा।
1: पटरा क्यों दे?
0: जिस उते धोबी कपड़े धोंदे ने। भगत नामदेव जी दात दे छीने सन ना, कपड़े धोंदे धोंदे हो अपनी आत्मा नु हरि नाम नाल धोंदे सन। इसे लिए उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मैंने तेरे नाम की उंगली टेके जिन्नी के पटरे नु खुंडकारे दी।